0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। चीन ने जापान के खसूसी इक्तसादी जोन में उसके सबसे जनूबी जजीरे के करीब चीनी बहरिया के एक जहाज के लाइव फायर मश्क करने पर जापान के खदशात को मुस्तरद कर दिया है। जापानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि इतवार के रोज एक चीनी मेजाइल डिस्ट्रॉयर ने बहरुल काहिल में ओकिनोतोरी शीमा जजीरे से 180 किलोमीटर जनूब मगरब में जापान के खसूसी इक्तसादी जोन के अंदर मशीन गन चलाने की मश्क की। टोक्यो ने अपने खदशात को सफारती जराए से बीजिंग तक पहुंचाया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मंगल को मामूल की न्यूज कॉन्फ्रेंस में जापान के एतराजात को बेबुनियाद करार दिया। ओकिनोतोरी शीमा का हवाला देते हुए उन्होंने चीन के साबिका मौकफ को दोहराया कि यह एक चट्टान है ना कि जजीरा, और यह खसूसी इक्तसादी जोन जबरेआजमी शेल्फ रखने का हकदार नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि खुले समंदरों में बीजिंग की सरगर्मियां बैन अल्कवामी कवानीन के मुताबिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जापान दूसरे ममालिक की जायज और कानूनी कार्रवाइयों को बदनाम कर रहा है और बैरूनी खतरे के खौफ को हवा दे रहा है। उन्होंने जापान पर इल्जाम लगाया कि वो अपने दोबारा मुसल्ला होने के अमल को तेज और जंग के बाद के बैन अल्कवामी नज्म को चैलेंज करने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जापानी हुकूमत का कहना है कि वो इलाके में निगरानी और कड़ी नजर रखने की अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के हक में वोट दिया है। सितंबर में नाफिज होने के बाद ये यूरोप में ऐसी पहली पाबंदी होगी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों सेनेट और कौमी असेंबली ने मंगल को इस कानून की मंजूरी दी। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर नए तालीमी साल के आगाज यानी सितंबर से सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर पाबंदी लग जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट्स बंद करने के लिए जनवरी तक मजीद 4 माह की मोहलत दी जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी होगा कि वो उम्र की तस्दीक के लिए फ्रांस के प्राइवेसी रेगुलेटर का मंजूर करदा डाटा इस्तेमाल करें। उम्र की बुनियाद पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदियां मुतारिफ करवाने के इकदाम बच्चों पर इन प्लेटफॉर्म्स के मुमकिन मनफी असरात के हवाले से बढ़ते हुए खदशात के अक्कास हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद की। यूरोपीय यूनियन भी कवायद पर गौर कर रही है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेन का कहना है कि मौसम गर्मा के बाद एक खास मंसूबा तजवीज किया जाएगा। जापान के कदीम दल हुकूमत नारा में सियाहों ने फ्रांसीसी हॉर्न यानी बाजे पर बजाई जाने वाली मौसीकी से जंगली हिरनों को एक साथ बुलाने के अमल का लुत्फ उठाया है। 100 साल से पुरानी तारीख के हामिल इस इवेंट को शिकायो से कहा जाता है। इसका इनेकाद हर साल बहार, मौसम गर्मा और सर्दियों में महदूद वक्त के लिए किया जाता है। इस साल मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का अमल 19 जुलाई को शुरू हुआ। हिरनों के तहफ्फुज के एक ग्रुप के रुकन की जानिब से बाजे पर बेथोवेन की पास्ट्रल सिम्फनी बजाए जाने पर तकरीबन 100 हिरन लोगों की नजरों के सामने भागते हुए कासुगा ताइशा श्राइन के मैदान में निकल आए। हिरन शाबलूत खाने के लिए धक्कम पेल करते रहे जो ग्रुप के मेम्बरान उन्हें खिला रहे थे। इस मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का इवेंट 6 सितंबर के अलावा 27 सितंबर तक हर इतवार को मुनाकिद होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान बदस्तूर गर्मी की एक शदीद लहर की लपेट में है। हवा के ज्यादा दबाव के एक मौलक निज़ाम के बायस दर्जे हरारत मुसलसल दूसरे दिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। और एक सिक्योरिटी फर्म का कहना है कि एक हैकर ग्रुप ने इस माह के शुरू में जापान की बड़ी मुंजमित फूड कंपनी निचिरेई पर होने वाले साइबर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी अवामी मुजाहरों के बाद फौज के कमांडर इन चीफ ओलेक्सेंडर सिरिस्की को बरतरफ कर दिया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: ライト、こっちこっち。
1: ごめん、遅くなって。
2: ハルさんの知恵袋。
3: अब हारू सान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की कन्वीनियंस स्टोर्स।
4: हीरा, जापान के कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में आपका क्या तासुर है?
3: ये वाकई कन्वीनियंट यानी बासहूलत हैं। इसलिए मैं इनसे अक्सर खरीदारी करती हूँ और कभी कभार तो किसी से मुलाकात के मकाम के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ।
4: जी, कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफी आसान होता है। ज्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक, यानी रोजमर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीजें दस्तियाब होती हैं। बाज में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फोन की बैटरियां और जेर जामे और मोजे तक दस्तियाब होते हैं।
3: यानी इनमें रोजमर्रा जिंदगी की तमाम ही चीजें दस्तियाब होती हैं।
4: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीजें। इनमें न सिर्फ ATM से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के जरिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।